0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब एक छोटी सी नदी बहती हुई समुद्र की तरफ बढ़ती है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक तो वह अपनी संकीर्ण पहचान, अपने किनारों और अपने नाम को बचा कर रखें, या फिर वह समुद्र में समा कर खुद समुद्र बन जाए। अगर वह नदी अपने किनारों को पकड़े रखना चाहेगी तो वह कभी समुद्र नहीं बन पाएगी और एक दिन सूख जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपने किनारों का, अपने अहंकार का त्याग करती हैं, वह अनंत महासागर का रूप ले लेती हैं। हम सब इंसान भी अपनी छोटी छोटी पहचानों के किनारों को मजबूती से पकड़े बैठे हैं। मेरा वंश, मेरी जाति, मेरा संप्रदाय, मेरा कुल, हम इसी दायरे को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी संकीर्णता की दीवारों को तोड़कर उस अनंत समष्टि से जुड़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह क्रांतिकारी सूत्र। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई, राम निकुल कुल भेटी ले, सब कुल रहिया समाई। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई, कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई।

पाएं। श्रोताओं, कबीर साहब एक गहरा रहस्य प्रकट करते हैं, कुल खोया कुल उभरे। जो मनुष्य अपने कुल यानी अपनी जाति, वंश और अहंकार रूपी संकीर्ण पहचान को खो देता है, उसका पूरी तरह विसर्जन कर देता है, वही असल में उभरे यानी संसार सागर से तर जाता है, मुक्त हो जाता है। कुल राख्या कुल जाए, और जो इस झूठे कुल के मान सम्मान और अहंकार को मजबूती से राख्या यानी बचा कर रखता है, उसका वह कुल और उसका आत्मिक अस्तित्व एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इस संकीर्णता से ऊपर उठने का उपाय कबीर अगली पंक्ति में बताते हैं। राम निकुल कुल भेटी लें, तुम उस राम से भेंट करो, उस परमात्मा से नाता जोड़ो जो निकुल है, यानी जो किसी जाति, वंश या सीमा के बंधन में नहीं बंधा है, जो निराकार और सर्वव्यापी हैं। जब तुम्हारी चेतना उस निराकार से भेंट कर लेती हैं तो क्या होता है, सब कुल रहिया समाई, फिर संसार के सारे कुल, सारे जीव और यह पूरी सृष्टि उसी एक परमात्मा में समाई हुई दिखाई देती है, फिर कोई पराया नहीं रह जाता। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा अद्वैत वेदांत के उस परम सत्य को दर्शाता है जहां व्यष्टि का समष्टि में विलय हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि वह स्वयं को ब्रह्मांड से अलग एक छोटी सी इकाई मान लेता है। यह कुल का अहंकार ही आत्मा के बंधनों का कारण है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य मैं इस कुल का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ के जाल में फंसा है, तब तक वह परमात्मा के विराट स्वरूप को नहीं देख सकता। जब अहंकार गलता है तो आत्मा निकुल यानी सीमाओं से मुक्त होकर परमात्मा से एकाकार हो जाती हैं। तब मनुष्य को समझ आता है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसका परिवार है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी पहचान की दीवारों को देखिए। हमने खुद को किन किन दायरों में बांध रखा है, जाति पाति, ऊंच नीच और वंश के इस अहंकार में हमें अपने ही भाइयों से कितना दूर कर दिया है। याद रखिए, ये सब पहचाने इसी मिट्टी के शरीर के साथ यहीं छूट जाएंगी। आज कोशिश कीजिए इन संकीर्ण दीवारों को अपने भीतर से ढाने की। खुद को किसी एक कुल का या दायरे का मानने के बजाय उस निकुल यानी उस निराकार परमात्मा की संतान मानिए। जब आप सब में उसी एक राम के तत्व को देखने लगेंगे तो आपके भीतर का सारा द्वेष, सारा भेदभाव मिट जाएगा।

भय मंत्रों के साथ पूजते हो तुम। अनेक देवी देवता, धर्म और अन्य बहुत कुछ संभाल कर रखा है तूने। भय अंतःकरण के गोपनीय कुपी में, मन की पहरेदारी में। भय मरना नहीं चाहिए, भय का अंत नहीं होना चाहिए, ऐसा तुझे लगता है। भय यानी तेरी चेतना, भय यानी तेरी ऊर्जा, भय यानी तेरी आत्मा और भय यानी तेरा सब कुछ, ऐसा लगता है तुझे। इसीलिए तू भय को पुचकारता है, भय का लाड़ प्यार करता है तू। तू भय की पप्पी लेता है और उसे गोद में उठाकर नाचता है मुक्त भाव से। तुझे अब भय से शर्म महसूस नहीं होती, भय तेरे जीवन का अविभाज्य घटक है। इसी भय के कारण तुम गुलाम बन गए हो, इसी भय ने तुम्हारा बुद्धिवाद खत्म कर दिया है, इसी भय के कारण ही तुम्हारे बुद्धिवाद से विवेक का जन्म नहीं हो पा रहा है, इसी भय के कारण ही तुम्हारा विचार खत्म हुआ है। फिर भी तुम कहते हो भय यानी जीने का आधार, भय न होने पर तू हो जाएगा निराधार। भय को तूने ऐसे संभाल कर रखा है जैसा वह तुम्हारा पूर्वज हो और भविष्य का वारिस भी। कठोरतम रूढ़ी परंपराओं को तूने संभाल कर रखा है भय की निष्ठा से, और बढ़ता है तेरे जीवन में कल्पनाओं का उद्रेक भेदाभेद परंपराओं के साथ। ये परंपराएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते समय बार बार हिदायतें दी जाती है, संभाल कर रखिए प्राणपण से भय को, ऐसा अभिवचन लिया जाता है। तेरी इस कठोर भय परंपरा में नहीं हुई मुक्त आज भी घर घर की स्त्री, बनाया है उसे तूने पुरुष के चरणों की दासी, घूंघट पर्दा बुरखे में बंदी बनाकर रखा है, घर में बंधक बनाकर और पशुगत व्यवहार से करता रहा है तू बलात्कार। उस पर शारीरिक और मानसिक भावनाओं का होता रहा मर्दन, भय परंपरा और उस भय का संक्रमण स्त्रीत्व संकल्पना में रोपण कर तू शेख ही बघारने लगा, पति यानी परमेश्वर, और बना दिया तूने स्त्री को गुलाम। उसे बुद्धि होने के बावजूद तू अत्याचार करता रहा उस पर, स्त्री पुरुष विषमता का लगाकर ठप्पा। तू बरगलाया सब जगह, अपनी भय कल्पनाओं को सत्य मानता गया,

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब एक छोटी सी नदी बहती हुई समुद्र की तरफ बढ़ती है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं। एक तो वह अपनी संकीर्ण पहचान, अपने किनारों और अपने नाम को बचा कर रखें, या फिर वह समुद्र में समाकर खुद समुद्र बन जाए। अगर वह नदी अपने किनारों को पकड़े रखना चाहेगी तो वह कभी समुद्र नहीं बन पाएगी और एक दिन सूख जाएगी। लेकिन जैसे ही वह अपने किनारों का, अपने अहंकार का त्याग करती हैं, वह अनंत महासागर का रूप ले लेती हैं। हम सब इंसान भी अपनी छोटी छोटी पहचानों के किनारों को मजबूती से पकड़े बैठे हैं। मेरा वंश, मेरी जाति, मेरा संप्रदाय, मेरा कुल, हम इसी दायरे को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी संकीर्णता की दीवारों को तोड़कर उस अनंत समष्टि से जुड़ने का मार्ग दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह क्रांतिकारी सूत्र। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाई, राम निकुल कुल भेटी ले, सब कुल रहिया समाई। कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाए, कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाए।

0: टाइम। श्रोताओं, कबीर साहब एक गहरा रहस्य प्रकट करते हैं, कुल खोया कुल उबरे। जो मनुष्य अपने कुल यानी अपनी जाति, वंश और अहंकार रूपी संकीर्ण पहचान को खो देता है, उसका पूरी तरह विसर्जन कर देता है, वही असल में उबरे यानी संसार सागर से तर जाता है, मुक्त हो जाता है। कुल राख्या कुल जाए, और जो इस झूठे कुल के मान सम्मान और अहंकार को मजबूती से राख्या यानी बचा कर रखता है, उसका वह कुल और उसका आत्मिक अस्तित्व एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। इस संकीर्णता से ऊपर उठने का उपाय कबीर अगली पंक्ति में बताते हैं। राम निकुल कुल भेटी लें, तुम उस राम से भेंट करो, उस परमात्मा से नाता जोड़ो जो निकुल है, यानी जो किसी जाति, वंश या सीमा के बंधन में नहीं बंधा है, जो निराकार और सर्वव्यापी हैं। जब तुम्हारी चेतना उस निराकार से भेंट कर लेती हैं तो क्या होता है, सब कुल रहिया समाई, फिर संसार के सारे कुल, सारे जीव और यह पूरी सृष्टि उसी एक परमात्मा में समाई हुई दिखाई देती है, फिर कोई पराया नहीं रह जाता। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा अद्वैत वेदांत के उस परम सत्य को दर्शाता है जहां व्यष्टि का समष्टि में विलय हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि वह स्वयं को ब्रह्मांड से अलग एक छोटी सी इकाई मान लेता है। यह कुल का अहंकार ही आत्मा के बंधनों का कारण है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक मनुष्य मैं इस कुल का हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ के जाल में फंसा है, तब तक वह परमात्मा के विराट स्वरूप को नहीं देख सकता। जब अहंकार गलता है तो आत्मा निकुल यानी सीमाओं से मुक्त होकर परमात्मा से एकाकार हो जाती हैं। तब मनुष्य को समझ आता है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसका परिवार है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत मन से अपनी पहचान की दीवारों को देखिए। हमने खुद को किन किन दायरों में बांध रखा है? जाति पाति, ऊंच नीच और वंश के इस अहंकार में हमें अपने ही भाइयों से कितना दूर कर दिया है। याद रखिए, ये सब पहचानें इसी मिट्टी के शरीर के साथ यहीं छूट जाएंगी। आज कोशिश कीजिए इन संकीर्ण दीवारों को अपने भीतर से ढाने की। खुद को किसी एक कुल का या दायरे का मानने के बजाय उस निकुल यानी उस निराकार परमात्मा की संतान मानिए। जब आप सब में उसी एक राम के तत्व को देखने लगेंगे तो आपके भीतर का सारा द्वेष, सारा भेदभाव मिट जाएगा। अपनी चेतना को अनंत होने दीजिए और उस परम सत्य में समा जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आरजे स्वरा, अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: आज वर हजारों विद्यार्थ्यांचे यशस्वी करियर घडवणारे 100% ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट असिस्टन्स करणारे उत्तर महाराष्ट्रातील बेस्ट इन्स्टिट्यूट अवॉर्ड ने सन्मानित कॉलेज केसेस ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जे आहे विद्यार्थ्यांचे उज्ज्वल भविष्य घडवणारे प्लॅटफॉर्म।
3: अशा या उज्ज्वल भविष्य देणाऱ्या कॉलेज मध्ये प्रवेश सुरू आहे। MBA, MCA सारखे PG कोर्सेस, तसेच BBA, BMS, BCA सारखे UG कोर्सेस, सोबतच MCA इंटिग्रेटेड प्रोग्राम, अशा अनेक डिमांडिंग कोर्सेस साठी तेव्हा आजच प्रवेश घ्या आणि आपले फ्युचर सिक्युअर व ब्राइट करा। व्हिजिट करा नेट ए ग्रेड अँड MBA फॉर MBA प्रोग्राम, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड रिसर्च, जिल्हा उद्योग केंद्रामागे, जळगाव।

भय मंत्रों के साथ पूजते हो तुम। अनेक देवी देवता, धर्म और अन्य बहुत कुछ संभाल कर रखा है तूने। भय अंतःकरण के गोपनीय कुपी में, मन की पहरेदारी में। भय मरना नहीं चाहिए, भय का अंत नहीं होना चाहिए, ऐसा तुझे लगता है। भय यानी तेरी चेतना, भय यानी तेरी ऊर्जा, भय यानी तेरी आत्मा और भय यानी तेरा सब कुछ, ऐसा लगता है तुझे। इसीलिए तू भय को पुचकारता है, भय का लाड़ प्यार करता है तू। तू भय की पप्पी लेता है और उसे गोद में उठाकर नाचता है मुक्त भाव से। तुझे अब भय से शर्म महसूस नहीं होती, भय तेरे जीवन का अविभाज्य घटक है। इसी भय के कारण तुम गुलाम बन गए हो, इसी भय ने तुम्हारा बुद्धिवाद खत्म कर दिया है, इसी भय के कारण ही तुम्हारे बुद्धिवाद से विवेक का जन्म नहीं हो पा रहा है, इसी भय के कारण ही तुम्हारा विचार खत्म हुआ है। फिर भी तुम कहते हो भय यानी जीने का आधार, भय न होने पर तू हो जाएगा निराधार। भय को तूने ऐसे संभाल कर रखा है जैसा वह तुम्हारा पूर्वज हो और भविष्य का वारिस भी। कठोरतम रूढ़ी परंपराओं को तूने संभाल कर रखा है भय की निष्ठा से, और बढ़ता है तेरे जीवन में कल्पनाओं का उद्रेक भेदाभेद परंपराओं के साथ। ये परंपराएं अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते समय बार बार हिदायतें दी जाती है, संभाल कर रखिए प्राणपण से भय को, ऐसा अभिवचन लिया जाता है। तेरी इस कठोर भय परंपरा में नहीं हुई मुक्त आज भी घर घर की स्त्री। बनाया है उसे तूने पुरुष के चरणों की दासी, घूंघट पर्दा बुरखे में बंदी बनाकर रखा है, घर में बंधक बनाकर और पशुगत व्यवहार से करता रहा है तू बलात्कार। उस पर शारीरिक और मानसिक भावनाओं का होता रहा मर्दन। भय परंपरा और उस भय का संक्रमण स्त्रीत्व संकल्पना में रोपण कर तू शेख ही बघारने लगा, पति यानी परमेश्वर, और बना दिया तूने स्त्री को।

0: सुख दुखे क्षमा बलि सदा संतुष्ट जो योगी संयमी दृढ़ निश्चयी अर्पी मज मनो बुद्धि भक्त तो आवड़े मज जो न लोकांस कंटाळे जास कंटाळती नते हर्ष शोक भय क्रोध नेने तो आवड़े मज नेने व्यथा उदासीन दक्ष निर्मळ निस्पृह सोळी आरंभ जो सारे भक्त तो आवड़े मज न उल्हासे न संतापे न मागे न जुरे चिजो बरे वाईट सोडूनी भजे तो आवड़े मज सम देखे सखे वैरी तसे मानापमानही शीत उष्ण सुखे दुखे करूनी सम मोकळा निंदा स्तुति नघे मौनी मिले ते गोड मानितो स्थिर बुद्धि निराधार भक्त तो आवड़े मज जे धर्म सार हे नित्य श्रद्धे नेमीची लक्षुणी सेविती ते तसे भक्त फार आवडती मज अध्याय 12 संपूर्ण।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज